0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक साथ

0: अपन विशेष शक्तियां आप में है, तो पास विदा न हो जाए, इसको इमर्ज रखना, सान शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी। ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं, कहीं अंदर समाने की कोशिश करती है ना तो बीमार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति से समाना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल Hey.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का निर्माण हो जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है, सिर्फ निमित्त भाव आ जाए हर समय तो और सभी गुण सहज आ सकते, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

amica. Giù di penduro. A che ab che samne. Sleep.

Mas...

precise. See?

see. Watch him again. Cerro.

Rodney, exorcise me.

0: एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है। ऐसे ये एक्सरसाइज
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: किस

0: अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुश हो जाए तो उनों के लिए तो बहुत दिल पसंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Suck.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी हिम्मत किया क्या हम आपस से अवश्य आएंगे। पौधों की अच्छी अच्छी उमंग के पत्र भी आए हैं और रोडियान में भी पौधों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं बाप ने आप सबके पीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। 9 वर्ष के नए उमंग बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा यही ऐसे बच्चों को वरदान देती है, इसी हिम्मत नशे में अमर भव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Jack.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चे क्या करते हैं? कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस

0: बहुत करने का। रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना, कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया। लेकिन किस लिए दिए? उसको फलीभूत करने के लिए दिए। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को स्मरण करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबर वार बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पहले आपको चांस मिलना चाहिए कि हम दूसरे को

सौ रुपये सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। ब्राह्मण की बहुत आगे रखेंगे, पूछेंगे ये सब भाव स्वागत की सेवा के लिए। जो सच्चा सेवादारी है आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएंगे, आप सेवा के बिचारे नहीं, आपके पास सेवा

अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवक। आपका चेहरा Bye.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

siate parau man puti sanskar.

ASMR, man.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सर्व द्वारा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा तो देखते हैं जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं। उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंधा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाए, क्योंकि बाप दादा भूखा रहते हैं क्या? रहते हैं। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ। नहीं, अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंदा हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

escena.

Immortal.

Wanna go, Bob?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसी है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिल को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेले
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शांति का

సేవా చేయి, వాడికి సేవా.

0: api at mawako extra sa kastay wohen mansa seva dwara sa kastay na himmat dena o vakutsa सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज इस कलप फिरके पूर्वज और पूजे आपात मैं बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते आप बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे बन रही है बने भी है लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को पढ़ाना है। आज विश्व में सुख शांति संतोष संतुष्टता की खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो। फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो। फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। फायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रही है, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाए। इतने सब फायदा और फायदा उठाने वाले ही है। आपका निमित्त भाव औरों को भी सहयोग देगा। बार बार रियलाइज करना, दिल से रियलाइज करना, क्या करना है क्या नहीं करना। नाक को 21 जन्म के लिए ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा देना और हाजी हाजी करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने अथॉरिटी बाप द्वारा मिली हुई है। पहले कोई भी संकल्प बोल कर्म करने के पहले बाप समान है या नहीं ये चेक करो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जब आपका विवेक हाँ करे हाजी, प्रैक्टिकल में लो। समान बनना है तो समान करना भी है, चलना भी है। बाप दादा तो हर बच्चे को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे ये भी बाप दादा से रोरियां करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्रह्मण जन्म लेते हुए दिए। याद है अपने जन्म का वरदान हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर शक्तिवान भव का वरदान दिया। किसने वरदान दिया? आलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती। वो क्यों? जब आलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर आर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप आर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है। उस स्वरूप में स्थित होके मालिकों वरदान दोनों स्वरूप की समृद्धि के स्थिति में रह के आर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाते। ये कभी शब्द अपने ब्रह्मांड डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर आप कहते हो ना कि बाबा आपको अब याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव हाथ उठाओ, अनुभव है अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता, हसूर हाजिर हो जाता, तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बन के आर्डर करो, जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

这怎么不干净？天，都这里。Oh, strong.

姐，我姐妹，阿拉被你们没抱得的，一道的夜，一道真的夜，真的多，什么？

Thank you.

फिर तो समझ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

किसको पदम किसको लाख नहीं दिए, लेकिन किसानों को जानना और प्राप्त करना जीवन में समाना, इसमें नंबर वार बाप दादा आजकल बार बार बिना प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। Yes.

Sa

No.

Chamacca.

0: समान बने।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सदा

0: फिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहजे ना बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी फिक्र रहता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: को पूरा से सुखियम रूप है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उससे ज्यादा

Jesse, get them.

भी कहता मेरा बच्चा इस मेरी

yo del sé. Mira, papá, que te... Tu papá se yo que Sika.

Señor.

0: cabeza al vago. Practicalmelo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसम, इसको कहा जाता है योग अगर निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। याद आती न देखी दुनिया याद आती सब मेहनत से चुरा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। सन सदा सहज बाप दादा का हाथ ऊपर अनुभव कराते सही छत्र छाया पर समस्या रूपी पहाड़ों सने पार को भी पानी जैसा हल्का बना देता। एक याद मेरे लव सीन रहे तो बाप दादा कहते हैं और कोई बुशारत नहीं करो के सागर में समा जाओ। कभी कभी बच्चे सने के सागर में समाते हैं लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल के आते अभी अभी कहेंगे बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं, बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल। समाते रहो परिवर्तन किया। अपने जन्म की आद का समय अनुभव याद है ना, ज्ञान और योद्धों मिला, लेकिन सने ने

0: 死吧！是你的兄弟没喽？都是他给你的，没那的事不都真？वैसे भी मुक्ति वर्ष बना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मौत उसका साधन है। सनी में समाया हुआ रही शनि का अनुभव सभी को है ना कि नहीं है? है, अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप से बाप दादा सबसे ज्यादा किसका है, किसका है, सब हाथ उठाएंगे मेरा है, ऐसे ना है ना? है, पीछे वालों का भी है हाथ उठा रहे, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं है, सबका तो बाप दादा आज की कहती है सने की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहजना योग लगाते हो ते भूल जाए, देखी दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब सने की छत्र छाया में रहेंगे, सने की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। सने की साखट से बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना देती है, निकलो ही नहीं, समाये रहो। सने ही कोई भी कार्य करते हुए सने को नहीं भूल सकता। सने में खोया हुआ हर कार्य करता, जैसे आज के दिन कोई नहीं ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या? सने समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ सने है उस जैसा बनना, ये मुश्किल नहीं होता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोच के कहो नहीं। सब चलता है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दो। दिया डायरेक्शन, अपने संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दी मुख से ने। ऐसे विश्व का मेरा कौन है? मेरी सेवा है। ये सब मेरा पन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना, ये देवान अपमान, ये अपमान छोड़ना ही संपन्न बनना, इसीलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता अर्थात नदी अपमान नदी मान न मेरे पद के रिश्ते हो फरिश्ता अर्थात ये हाथ का रिश्ता खत्म।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ।

sick.

name, but then get the

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Matsi. Sarva Shaktivan Combine.

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

Mr.

सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, और ना लगा देते हो। Peace.

Tjena

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोड़ियां सुनते हैं, रोड़ियां बहुत हिम्मत की करते हो। Check this out.

saca, rófamelo.

So.

Sor Sangalamba emerge naked. Sedat kar

is at the God saying, Yeah.

Shit. Hey. Ese.

0: नहीं कहते बाप दादा है या नहीं है, यही नशा रखो और होंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है, लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे। इसलिए अपने सिक्की लते सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बता हुआ, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया। प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना होता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

vive presto di me.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बोलने की आवश्यकता नहीं।

Yes.

mehr AG.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति डरने बहुत अच्छा करती, इसलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और हलचल हो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां वहां एकाग्र हो जाए, डरने हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्व स्थिति और सेवा दोनों कंबाइन, परसेंटेज में कोई कमी नहीं हो, कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, कभी स्व की परसेंटेज ज्यादा नहीं, बैलेंस सदा आपके बैलेंस द्वारा विश्व के आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अभी ब्लेसिंग चाहिए विश्व की आत्माओं को, मेहनत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी बच्चों को

missing. Charon Orque. Prestito que pitch me.

cosa, Teo. E si plectis. Soy of me. Advocar Teo. Ya sabjo. Chisame.

சக்தி, கீற்றல், சபேபார், கடக்கே தேக்கிய அகர் ஐசி சமய I'm not.

drummer, Master Sarva Shaktivan स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ।

0: of Emily.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ चंद मार्ग सोचने के सबसे आश्चर्य की सोचने को फिनिश करो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय सेवा के सफलता में जय हर आत्मा को शुभ फर्श पे ये विशेष स्मृति में इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो के सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है, इस निश्चय से उड़ते चलो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हर पल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय का इशारा बाप दादा ने काफी सुन

0: Chícaro, que agar koi bhi fikin aata hai, tufan aata hai, to tufan tufa ban jata hai. Tufan tufan nahi, lekin tufa ban jata hai. Koi bhi
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, बढ़ाते चलो। एक दो के साथी है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, जो बाप से प्यार है ना, बाप से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है। दीवर पुरुषार्थ बच्चों,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समझते

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप अपना ध्यान अंडरलाइन कर, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो माया की भी अंत तो होनी है। लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पाँव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना मिट नहीं जाए। कभी भी कोई समस्या को पाप समझ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे हो

0: Christian.
1: Awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़े बड़े है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखते गए। ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितने सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़ी है, अच्छी आगे बढ़ी है, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है, वो यही बात।

0: comme soin abomanbi mixodet ski abi avashtar chit na siva me aage badhte hain utna hi vritti me
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे अभी एक सेकंड।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, बाप दादा यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं और दूसरों से भी दुआएं लो, चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति

भावना का सहयोग
Andere.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सांस करने में घबराओ, क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सांस
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए फेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि फेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द को, बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है, क्यों ये क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं, इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो, क्यों शब्द इंग्लिश में लिखो कितना मुश्किल है।

0: चैत्य हो ना कि चलती चलती प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वरूप आदि

Mathiam Kal Ar

0: Francisco. E máscara. Manda mesmo, dime. Essa.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं, तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या बेला पर सलोफकन भी है, सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर, ये सलोफकन है ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग एक

Yeah.

Bock.

0: φοβανάω. Μα τα νύπαν. Νερά τα σιακτιοκά αν πάω χαράω. Μανσά τώρα. Φεύρισε τώρα. Φάτσα τώρα.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं। कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी सोचो, और कारण के साथ निवारण भी सोचो।

Sí.

Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस, सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यार, तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इच्छा पाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली आत काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लाऊंगा, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके देगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गया हुआ अनुभव को हजारे लोग बदलने चाहिए बदल नहीं सकते। जैसे आप सपने जीने का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है, अगर हजारे लोग आपको बदलने चाहे बदल सकते हो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान के, चाहे योग के, चाहे धारणा के, चाहे सेवा के।

0: Shruti, तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? जिस भी समय आपको अनुभव होगा कि जब अनुभव के सीट पर सेट होते हो किसी भी वरदान के स्वरूप में, अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत करनी होती है। नेचुरल अनुभूति होती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Chapter.

के लिए मुक्ति

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मददगार जो हिम्मत का पहले पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और श्रम को बाबा आप कर लो ना बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा ठीक है पहले पाँव तो रखो, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय ये मजबूत है, बाप को कहने के पहले ये चेक करो हिम्मत का पांव बनाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव भरा, इसीलिए गया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले वाह, निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम को ना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से देखते हैं, वर्तमान, स्वराज, अधिकारी। अभी भी राज्य हो, लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे

0: वश में विश्वराज अधिकारी और द्वापर से कलयुग अंत तक पूजन के अधिकारी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

حسن.

Ganz klar. Mira, mira.

मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं। शूद्र जीवन के संस्कार हैं।

primera

समय पर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नहीं होता।

చేసే రావణుకో సిరఫ్ మారితే నహీ, మారనే కే బాద్ చలా.

0: 个तो ना प्रूफ खत्म।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

मास्टर दादा बना के अपन ने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतने विश्व की आत्माएं शक्ति द्वारा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रेत चाहे जानते थे कमजोर के ऊपर

Dios.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Last number भी

Peace.

0: से पांडव है, अरे कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे, कहेंगे नहीं। मेरा बाबा कहेंगे, जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गए। दिल का सौदा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो ऑर्डर करने से स्थित हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया

क्षमा करना ये एक कत है। दूसरा

Sangkal.

तीसरा खाता है। पुण्य का खाता। पुण्य

सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी जैसे है।

什么

personal day. Kitni vishesh rahi. Sa.

personality. Stop.

就不见去德拉巴那的。सुना है।

0: सारे क्लब में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं, ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी, ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखम बातें आएंगी, क्योंकि पास पिता न रोना है ना, घबराओ नहीं। बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी रुई बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है? है नशा, अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं, अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। ये स्मृति रखो,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे, टेंशन पे रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो, मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इसलिए खुदा दोस्त की

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों की भोजन खिलाया, कुछ किया, समझते बड़ा पुण्य हो गया। लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा, ब्रह्मा भोजन का, यज्ञ का कणा, बहुत वैल्यूबल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अखनों की, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक इस भ्रष्टाचार अत्याचार

सुनते रहिए शिवा रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी अपन ने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे देखो रावण को मारते भी है, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते, जलाते हैं और जला के फिर हड्डियां जो है वो आजकल तो नदी में डाल देते। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो, ज्ञान के पॉइंट्स से, धारणा के पॉइंट्स से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन स्वा नहीं करते हो योग अग्नि में, और फिर जो कुछ हड्डियां बच जाती है ना बात की, वो ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। तीन काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, दस वाली मुरली पड़ी तो भी फिर आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में चलाया नहीं, स्वाह नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी पाप सागर में डाल समापन। इसलिए इस वर्ष में पाप दादा हर बच्चे से मुक्त देखने चाहती है। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना तो मुक्ति दाम में पाप के साथ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी ओके
3: नहीं, सदा ओके। क्या फिक्र है?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है। कुछ भी हो ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे ना,

बच्चों के मन में खुशी

आगे बढ़ने में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

sucesso.

Adiós.

مشکل.

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध समझ।

0: साधन।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्र संकल्प करो, संस्कार कट करो, स्वभाव का मत भेदो। तीसरी बात कमजोरों ने की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है, सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हो ही पड़ी। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ। अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा का गीत को।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं कहते हैं कि योग क्या, बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, कहेंगे ज्ञान यूज करते हो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी पाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सारा परसेंटेज लेके बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लेके, फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को। लेकिन बैलेंस, स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है, सब रिजल्ट लिखेंगे, सारा परसेंटेज लिखना। योग युक्त दादी लंबा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मना के बाद ये रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना, बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वो चाहते तो सभी है। बाप दादा आज शिकले देख रहे हैं, चाहते हाँ करेंगे करेंगे करेंगे लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना तो बाप से किया हुआ वायदा भी बुला देता है। वेस्ट कदम एक मिनट अभी भी एक मिनट पावरफुल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह
2: लेकिन जो आया वो गया कैसे।

संयोग हिम्मत फैलाएंगे।

0: सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर, इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी सत्य हो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वचपोड़ी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ótimo.

Sucks shit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साधारण नहीं होता है।

खुशी को जाने ही नहीं देना खुश रहे।

चितना।

0: basically. Mother ki shikal dekhna baap ke dil.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई, फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और बरकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले, ये तो बाप समान, ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते, ये तो शिव बाप जैसे लगते है भी और होनी है। टीचर्स आधार मूर्त है, जैसे बाप के लिए कहते हैं ब्रह्मा बाप, सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप के गति आप टीचर्स को दिए बैठने के लिए, मुरली सुनाने के लिए निमित टीचर्स बाप की गति मिली हुई। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्द पा दिया। बाप दादा भी सदा टीचर्स को इसी विशेष महत्व से देखते महानो महत्व वाले है ना, ऐसे ऐसे है। कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट लेवे सर्टिफिकेट बाप दादा तो देखते रहते हैं। क्या बकरे, ये तो बकरी हुई पहले ही है, बकरी हुए को क्या बकरी। जा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी ने ध्यान से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इसको अच्छा नहीं।

bit.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है। वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ वा व्यर्थ सोचना, अशुभ वा व्यर्थ बोलना और अशुभ वा व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना। अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते
3: में देखा तो बोल और कलम में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करे। दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो मुख पर। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्यों पाप दाता को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। पाप दाता तो उस समय ये सोचते के साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार ही निराकार ही है। बिल्कुल सभी लगा भी तुझे, छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश। बाप को भी बच्चों पर फीत है, लेकिन पता नहीं क्या कोई किनारे कर लेते हो, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता कैसे किनारा कर लिया। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो, ब्रह्मन जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से उतरो नहीं।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है, बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है, यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है, जब मन का टीवी शक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आप एक गीत है ना, शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव पाप को प्रत्यक्ष करेंगी। छोटे छोटे खेल बाल बंद करो, आप वान परस्त स्थिति को इमर्ज करो। बाप दादा सभी बच्चों को सितारे देख रहे, कोई भी बात आवे और ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

Jeyceltél. A B. Szame. Szame bonnéken a tészi. Mata.

परिवर्तन कराना चाहते। जो एक ही शब्द बार बार देवर पुरुषारत से शारती बना देते, और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए, दीवार पुरुषार्थ भी है कि देवर पुरुषार्थियों के लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देते। एक शब्द जान तो गए होंगे क्यों सब होशियार है। एक शब्द वो है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण सामने लाओ। कारण सामने आने से वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता। तो बाप दादा संकल्प सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द

सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण

लड़कियों का आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते तो शांति से अंदर

साथ आप बच्चे भी।

चर्चित चित्रों से आज तक क्या बात।

shot.

Esse cara, Richard.

आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सके। Shit.

said.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा पूछते हैं, वो तो देख लिया बिल्कुल देखा खेल, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने

Romano.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते और कहते क्या है क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे। संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं जिसको आज आप मेरा कहती हो? वो मेरा है या रावण का है, किसका है? आपका है तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया है। और क्या जाता है ना कभी तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार, आत्माभिमानी में ये संस्कार नहीं है, है नहीं है ना? तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार करके कह के अलबेले हो जाते, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

0: ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। पता हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ले गिफ्ट दी, अच्छा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं, लाइट और माइट स्वरूप से व्यर्थ को जलाओ, जो

0: לשרקו. מברמן סופליסטאו.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं लेकिन मानो बीच बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? याद आ गया। अच्छा, एक शब्द है मैं अपमान के रूप

0: อภิมานกับแม่แม่จะปูระนี้โอเต้โทเฟร์ติลชิกัสต์เมียบีอันเต้แม่การนิสัตตาจัลนิสัตตาบ่ทุกข์एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद लाते हैं और मैं देवमान में भी लाते हैं, मैं दिल शिकस्त खुश भी करते हैं और अपमान की निशानी जानते हो क्या होती है। कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान अपमान की निशानी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऊपर आ सकते, अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा, चाहेंगे खसारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी दे। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर, सहयोगी बनाए है उसकी मुबारक है और बनाओ। विशेष बाप दादा
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाता है। इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप में लाया
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

있네. 게 걸어봐 세나. 게 니메테 바니 위마비 가 갈려 Oh.

नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहाँ पहुंच नहीं पाते क्यों? के वायुमंडल की प्रांतिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना।

0: कष्ट कती हुई तब यहाँ पे यहाँ पहुंचे, नहीं तो सोए हो जाते अच्छी तरह से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

5G. Apa 5G?

0: इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना, तो तरस पड़ता है ना कि तरस नहीं पड़ता, पड़ता है ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: See you.

एक सेकंड, बीच बीच में निकाल, अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है, लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो, और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के बावजूद देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Choco. Fish was...

on.

0: subtle but mean. Nimit bananika. Smirtika tilakdiya. Swayam saman.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत नहीं, दिल आराम दिल में समाया रहेगा और आप दिल आराम के दिल में समय हुए रहे। दिल में बाप समाया हुआ है माया की, किसी भी रूप की, चाहे सूर्यम रूप हो, चाहे रायल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वपन मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत तो मुक्त हो जाएंगे ना बाप दादा, मनसा में भी मेहनत तो मुक्त देखने चाहते। मेहनत तो मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठ कोटा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।